0: की ताजगी का सफर तय कीजिए।
1: अलैका या सय्यदी
0: यूसीपी की दुनिया के साथ। तो सुनते रहे।

और वही तो है जिसने पानी से आदमी पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब और साहिब कराबत दामादी बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत रखता है।

और अपनी लाठी डाल दो। जब उसे देखा तो इस तरह हिल रही थी गोया सांप है, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर न देखा। हुक्म हुआ कि मूसा डरो मत, हमारे पास पैगंबर डरा नहीं करते।

0: यहां तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डालें और उनको खबर भी ना हो।
1: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر

अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। इस दौरान यहूद और मुनाफिकीन ने झूठे प्रोपेगेंडे कर कर के मदीने में हलचल बपा कर रखी थी। यहाँ तक के ये खबर भी उड़ा रखी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। चुनाचे जब एक मुनाफिक ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी की ऊँटनी पर सवार आते देखा तो बोल पड़ा, वाकई मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं। देखो ये तो उन्हीं की ऊँटनी है, हम इसे पहचानते हैं और ये ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। शिकस्त खा कर भागा है और इस कदर मरूब है कि उसकी समझ में नहीं आता कि क्या कहे। बहरहाल जब दोनों कासिद पहुँचे तो मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया और उनसे तफसीलात सुनने लगे, हत्ता कि उन्हें यकीन आ गया कि मुसलमान फतायाब हुए हैं। उसके बाद हर तरफ मुसर्रत व शादमानी की लहर दौड़ गई और मदीने के दरोबाम तहलील व तकबीर के नारों से गूंज उठे और जो मुसलमान मदीना में रह गए थे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फतह मुबीन की मुबारकबाद देने के लिए बदर के रास्ते पर निकल पड़े। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हमारे पास उस वक्त खबर पहुंची जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साजादी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अकद में थी। दफन करके कब्र पर मट्टी बराबर कर चुके थे। उनकी तैमारदारी के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मुझे भी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने ही में छोड़ दिया था। माल गनीमत का मसला। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्का खत्म होने के बाद 3 दिन बदर में क़याम फरमाया और अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग से कूच नहीं फरमाया था कि माल गनीमत के बारे में लश्कर के अंदर इख्तलाफ पड़ गया और जब ये इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिसके पास जो कुछ है वो आपके हवाले कर दे। सहाबा कराम ने इस हुक्म की तामील की और उसके बाद अल्लाह ने वही के जरिए इस मसले का हल नाजिल फरमाया। हजरत उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने से निकले और बदर में पहुंचे। लोगों से जंग हुई और अल्लाह ने दुश्मन को शिकस्त दी। फिर एक गिरोह उनके ताकुब में लग गया और उन्हें खुदेड़ने और कत्ल करने लगा और एक गिरोह माले गनीमत पर टूट पड़ा और उसे बटोरने और समेटने लगा और एक गिरोह ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाले रखा कि मुबादा दुश्मन धोखे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अजियत पहुंचा दे। जब रात आई और लोग पलट पलट कर एक दूसरे के पास पहुंचे तो माले गनीमत जमा करने वालों ने कहा कि हमने उसे जमा किया है, लिहाजा इसमें किसी और का कोई हिस्सा नहीं। दुश्मन का ताकुब करने वालों ने कहा, तुम लोग हमसे बढ़कर इसके हकदार नहीं क्योंकि इस माल से दुश्मन को भगाने और दूर रखने का काम हमने किया था और जो लोग रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर कार फरमा रहे थे उन्होंने कहा, हमें ये खतरा था कि दुश्मन आपको गफलत में पाकर कोई अजियत न पहुँचा दे, इसलिए हम आपकी हिफाजत में मशगूल रहे। इस पर अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल गनीमत के मुतालिक पूछते हैं, कह दो गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, बस अल्लाह से डरो और अपने बाहमी तालुकात की इस्लाह कर लो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर वाकई तुम लोग मोमिन हो। उसके बाद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल गनीमत को मुसलमानों के दरमियान तकसीम फरमा दिया। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज बदर में क़याम फरमाकर मदीने के लिए चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मुशरिक कैदी भी थे और मुशरिकीन से हासिल किया हुआ माल गनीमत भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी निगरानी सौंपी थी। जब आप वादी सुफरा के दर्रे से बाहर निकले तो दर्रे और नाजिया के दरमियान एक टीले पर पड़ाव डाला और वहीं खुम्स 5वां हिस्सा अलैदा करके बाकी माल गनीमत मुसलमानों पर बराबर तकसीम कर दिया। اور وادی صفرہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ نظر بن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا۔ اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایزا رسانی میں حد درجہ بڑا ہوا تھا۔ آپ کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کے زبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معید کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتا تھا، اس کا کچھ ذکر پچھلی نشستوں میں گزر چکا ہے۔ یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی، اور اسی شخص نے آپ کی گردن پہ چادر لپیٹ کر آپ کو قتل کرنا چاہا تھا۔ اور اگر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بر وقت نہ گئے ہوتے تو اس نے اپنی دانست میں تو آپ کا گلا گھونٹ کر مار ہی ڈالا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا، اے محمد، بچوں کے لیے کون ہے؟ آپ نے فرمایا، آگ۔ اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ جنگی نقطہ نظر سے ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جانا ضروری

0: सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, भतीजे यही लोग सरबर अवर्दगान कौम थे। उसके बाद हजरत सैयद बिन हुजैर रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज बर्दाज हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अल्लाह की हम्द है कि उसने आपको कामयाबी से हमकिनार किया और आपकी आंखों को ठंडक बख्शी। बाखुदा मैं ये समझते हुए बदर से पीछे ना रहा था कि आपका टकराव दुश्मन से होगा। मैं तो समझ रहा था कि बस काफिले का मामला है, और अगर मैं ये समझता कि दुश्मन से साबका पड़ेगा तो मैं पीछे ना रहता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, सच कहते हो। उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा में इस तरह मसफर व मंसूर दाखिल हुए कि शहर और गिर्दो पेश के सारे दुश्मनों पर आपकी धाक बैठ चुकी थी। इस फतह के असर से मदीने के बहुत से लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए, और इसी मौके पर अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने भी दिखावे के लिए इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ आवरी के एक दिन बाद कैदियों की आमद आमद हुई। आपने उन्हें सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु पर तकसीम फरमा दिया और उनके साथ हुस्ने सलूक की वसीयत फरमाई। इस वसीयत का नतीजा ये था कि सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद खजूर खाते थे लेकिन कैदियों को रोटी पेश करते थे। वाज़े रहे कि मदीने में खजूर बेहैसियत चीज थी और रोटी खासी गरां कीमत। सामईन, वक्त की कमी के बायस हम अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करेंगे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली नशिस्त में। इसके साथ ही कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

www.lucifer.edu.uk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: लाहौर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: Welcome back, listeners. You're tuned into FM 92.6 UCP Ki Duniya, jahan hamara show chal raha hai UCP Faculty Hour. And we're discussing about the English department or iski exciting offerings. To break pe jaane se pehle hamari baat ho rahi thi Miss Ariba ke saath, jo hame bata rahi thi ke future prospects kya ho sakte hain, career ke hawale se hame English department kis tarah se help karta hai. To Miss Ariba, please aap continue kar sakte hain.
2: So I was referring to the industry and the diversity that we see in the industry today and how it's, you know, changing day by day. So, going back to your question, what you were asking earlier, Nayab, about CSS and many other competitive,
1: competitive
2: exams that, you know, students
1: yeah.
2: like to compete in terms of, you know, English literature, linguistics and language, I think it could be very beneficial for the students because not just that, it improves their, you know, expression, because obviously language is, you know, an important tool for the competitive exams. But at the same time, the way they critically view the questions is also very important. And I think this comes with their understanding of literature and the world around them.
1: Yes,
2: literature definitely, you know, brings a world view in a different perspective. So not just that they understand, you know, the mini narratives, but a nuanced understanding of the current politics of the world is also, you know, there with literature. So agar aap ek perspective se dekhe, so literature is giving them an interdisciplinary understanding of, you know, what's happening around. And that is very important for CSS because not just writing, aapne world view ko bhi dekhna hai. आपने करंट टाइम्स को देखना है, आपने उस टाइम की मूवमेंट्स को देखना है. सो ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इफ यू स्टडी देम इन डिटेल. एंड आई थिंक यू नो आवर डिपार्टमेंट करिकुलम इज प्रोवाइडिंग यू विद दैट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दैट कैन हेल्प यू क्लियर सीएसएस.
1: यस एग्जैक्टली. और जैसे डॉक्टर ताहिर ने भी हमें कुछ वक्त पहले बताया कि इंग्लिश डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ, तो वो तो लग रहा है बहुत ज्यादा होगा, इंटरेस्टिंग होगा.
2: यस एंड द वैरायटी ऑफ कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग इज ऑल दे आर आल्सो वेरी इंटरडिसिप्लिनरी बिकॉज अभी रिसेंटली वी यू नो लास्ट ईयर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी ऑफर अ कोर्स फॉर डिजिटल स्टोरी टेलिंग दैट वॉज इन कोलेबोरेशन विद सी एस डिपार्टमेंट. वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू यू नो हैव सम कोर्सेज दैट आर लिंक्ड विद द पॉल साइंस डिपार्टमेंट एंड मेनी अदर्स सो दैट यू नो अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज यू नो कुड बी डिस्प्लेड.
3: लेट मी ऐड मिस नेहा, हियर वी आर रेगुलरली अपडेटिंग आवर कोर्सेज फॉर बीएस प्रोग्राम्स, एमएस एंड देन पीएचडी. रिसेंटली वी गॉट अप्रूवल ऑफ 3 आवर कोर्सेज एज वेल. Ms. Ariba can mention the name and title of the course that we have introduced in BS English of related to literature.
2: Exactly, yes.
3: What
2: that is
3: that
2: Blue,
3: one?
2: Yeah, that's Blue Humanities. It's an interdisciplinary course that deals with, you know, the water crisis.
1: I really
2: the water
1: wanted to know interdisciplinary courses. Thank you, Ms. Ariba. Ye bahut interesting.
2: Exactly. And then we have eco-linguistics as well. Yes.
3: Yes. And then we have also included clinical linguistics.
2: Yes.
3: So these courses we have included to provide interdisciplinary research to our students.
1: And seems to be very modern.
3: Yes,
1: ट्रेंडिंग
3: exactly.
1: और टाइम के लिहाज से बहुत अपडेट कोर्स लग रहे हैं. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत इंटरेस्टिंग है. सर एक और सवाल जो मेरे जहन में भी आ रहा था कि हाउ डू स्टूडेंट्स इंगेज दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिगार्ड टू लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट और रिसर्च. तो रिसर्च से लाइक मैं जानना चाहूंगी कि क्या अपॉर्चुनिटीज हमारी इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफर कर रहे हैं एंड हाउ डू वी केटर रिसर्च हियर.
4: इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम रिसर्च स्किल्स को स्टूडेंट्स में इंस्टिल करने की कोशिश करते हैं. अभी जैसे डॉक्टर ताहिर ने बात की, मिस अरीबा ने बात की कि वी ऑफर अ ह्यूज वैरायटी, अ वाइड एरे ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, और हम वो स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं. अब जाहिर है जब आप स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिव स्किल्स पे जाते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ एक सिस्टम है तो उसमें एग्जाम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छे भी हों जब तक उनकी लैंग्वेज स्किल्स वेल डेवलप नहीं हैं,
1: बिल्कुल,
4: तो वो उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आती. तो यहाँ पे लाइक इस हवाले से डिपार्टमेंट के अंदर हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से, लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से तो वी मेक एफर्ट्स फॉर द एंटायर यूनिवर्सिटी. लाइक आई बींग द डायरेक्टर मेक श्योर के आर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स इन देयर क्लासेस, और उसके लिए हमने करिकुलम के अंदर चेंजेस लाई, उसके अंदर हमने टीचिंग स्टाइल्स के अंदर लाई, यू नो नाउ. एंड दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक फीचर ऑफ यूसीपी दैट ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन क्लासरूम ऑन डेली बेसिस इन ऑल. यानी अब हमने टीचिंग को एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट दे दी है और स्टूडेंट सेंटर्ड कर दिया है इसे. अब आते हैं रिसर्च वाले जो बात है कि सबसे पहले तो हमारे अपने क्रेडेंशियल्स हैं, यानी हमारे यहाँ जो फैकल्टी है इट्स अ वेरी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी एट द फर्स्ट प्लेस, एंड सेकेंडली दे हैव एक्सट्रीमली क्रेडिबल रिसर्च क्रेडेंशियल्स। हमारी मेजॉरिटी जो प्रोफेसर हजरात हैं, हमारे जो लेक्चरर्स हजरात हैं, उनकी इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिकेशंस हैं। और इसी तरह अब ये तो एक एस्पेक्ट है, ये तो एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट है, लेकिन वो जो स्किल्स डेवलप की हैं ओवर द ईयर वो हम स्टूडेंट्स में बहुत कॉन्शियसली इंस्टिल करते हैं, और नतीजतन हमारे बहुत सारे एमएस के और पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं इवन बिफोर हैविंग कंप्लीटेड देयर डिग्रीज दे हैव पब्लिश्ड इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स।
1: Amazing.
3: Okay, let me add here, Dr. Kazi, thank you for adding all this. Our students, this is my claim, ये मेरा दावा है कि हमारे students जो अभी MS कर भी नहीं रहे होते, जैसे Dr. Kazi ने बताया, वो impact factor journals में publish कर रहे हैं। BS के students जिनका भी BS complete नहीं हुआ वो impact factor journals में publish कर रहे हैं। And it was previously a myth that people from literature and linguistics, they cannot publish in impact factor journals. Now we have busted that myth, and now we are continuously publishing in impact factor journals. Exactly. And then our young lecturers, they are publishing in impact factor journals. We are expecting from our PhDs that they should publish in impact factor journals. They all are publishing, but young lecturers, young students, they all are publishing in impact factor journals. So it is my claim that my department is publishing the best research in Lahore and even in Pakistan in top quality journals.
4: True that.
1: बेहतरीन सर, मेरे जहन में अभी भी कुछ सवाल हैं रिसर्च से रिलेटेड, विल एक्सप्लोर देम ऑफ कोर्स राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस, इस इज FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग FM 92.6 जहां हमारा इस वक्त शो चल रहा है UCP फैकल्टी आर। यहाँ ब्रेक पे जाने से पहले हमें डॉक्टर ताहिर बता रहे थे रिसर्च के बारे में। सर, मेरा यहाँ पर एक छोटा सा सवाल था जो शायद एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट सभी के माइंड में आ रहा हो कि क्या BS का बच्चा भी रिसर्च में इन्वॉल्व होता है या वो भी कोई थीसिस लिखता है? क्योंकि मेरे ख्याल से ये बड़ा मुश्किल होता होगा ना, फर्स्ट टाइम रिसर्च के साथ फेमिलियर होना, इतनी टेक्निकलिटीज में आना।
2: जी मिस ने आप, मैं आपके सुनने वालों को स्पेशली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि HEC का जो करिकुलम है उसमें मेंशन किया हुआ है कि टीचर्स, हम जो टीचर्स हैं हमने अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोज करना है रिसर्च राइटिंग के हवाले से फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर। सो वी ग्रेजुअली प्रिपेयर देम बाय गिविंग देम सम असाइनमेंट्स, 500 वर्ड्स इन द बिगिनिंग इन द फर्स्ट ईयर, 1000 वर्ड्स इन द सेकंड ईयर, रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज, एंड देन 3000 वर्ड्स देन इन द थर्ड ईयर, and in the fourth year we move to 5000 to 8000 words in the seventh and eighth,
1: a mini thesis
2: exactly,
1: time yeah.
2: In the seventh and eighth semester we offer them a course as well that is related to research, and then our teachers, they work very hard for our students grooming, and then they prepare them to write research papers. As I mentioned previously, my students, they are publishing, even 7th and 8th semester students, they are publishing in impact factor journals, and we are grooming them and we are making them ready for the market.
1: Isi baat se mere mind mein ye question aaya tha ki ye to bahut mushkil task hota hoga, of course teachers ke liye bhi bahut mehnat hogi, to काफी interesting lag raha hai ki hamare bacche bhi kar rahe hain, BS ke bacche bhi.
3: Main Dr. Tahir ki add karta chalo unki baat mein ki jaise currently in the current semester I was teaching 7th semester student रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कोर्स था, तो लाइक 45 स्टूडेंट्स थे उसमें, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई स्टार्टेड गिविंग देम ट्रेनिंग इन रिसर्च, और उनका जो मिनिमल टास्क रखा ये था कि देयर बी राइटिंग अ रिसर्च आर्टिकल, और उसमें जो एटलीस्ट फर्स्ट 4 सेक्शंस जिसमें लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन लीडिंग टू लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च मेथोडोलॉजी, और ऑप्शनल हमने रखा था कि उसमें एनालिसिस पे भी, एंड इट्स नॉट ओनली इन वन सेक्शन, लाइक वी हैव सेवरल सेक्शंस एट द मोमेंट। तीनों सेक्शंस में स्टूडेंट्स ने, ऑल ऑफ देम एटलीस्ट फर्स्ट 3 चैप्टर्स उन्होंने सबमिट किए हैं अपने रिसर्च आर्टिकल के, इंट्रो, लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के। तो दैट्स हाउ वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स इन रिसर्च।
4: I would like to add here, Nayab, that research does not come just from teaching. Jaise Sir Tahir ne bataya and Dr. Kazi ne, there needs to be an environment for research, and I think UCB is providing that environment, particularly in our department. If I would enlighten the audience here, that we have research groups that are, I think, 4
1: right.
4: research groups, yeah, and
1: yes.
4: that are working in various, fields. Some of them are working in linguistics purely, some in literature, and some are working on interdisciplinary and multidisciplinary researches. And, you know, these groups not just, enable the students to, conduct research in collaboration with the teachers, but they're also organizing, research discussions and talks that are happening almost every week, if I'm not wrong, Dr. Tahir. And the purpose of this is that they can interact with the researchers abroad, directly through virtual forums, and they can ask questions. And some of the researchers that we have brought to UCP in our recent events that we have conducted are researchers that were published in 2023 or 2024, and these are very recent researchers. So we really want that a liaison is to be created between the international researchers and the researchers at UCP. So overall, what I'm trying to say over here is that we are creating that atmosphere of research, which is very important in modern times.
1: Well, that's fascinating. I mean, from academia to media, publishing to corporate sectors, or opportunities to bahut endless ho gayi hain yahan pe. Sir, ek aur sawal tha, kuch mere jaise students hote hain jinki English thodi si weak hoti hai, tools ke bare mein aap kuch guide karna chahenge? Jaise ChatGPT aajkal bahut in hai, to kya mere jaise kamzor angrezi wale log ChatGPT use karke research kar sakte hain?
2: Yes, but again, उसके लिए मैं आपके स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि prompts engineering is very important. वो जितना अच्छा prompt देंगे चैट जीपीटी को, उतना ही अच्छा वो रिस्पॉन्स आएगा. तो yes, हमारे तमाम कोर्सेज में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं हमारे, हमने कोर्स आउटलाइंस में इंक्लूड किया हुआ है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को जितने AI टूल्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाना है. हम अपने स्टूडेंट्स को बिगनिंग में ही एक्सपोज कर देते हैं AI टूल्स से, एंड वो फिर उसको सीखना शुरू कर देते हैं, और टीचर्स उनको गाइड करते हैं कि आप इन टूल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर देयर राइटिंग, देयर स्पीकिंग एंड देयर रीडिंग एंड वोकैबुलरी डेवलपमेंट स्किल्स.
3: और इसमें मैं एक ऐड करूं कि हम एक कोर्स भी MS लेवल पे एक कोर्स भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं.
2: Exactly.
3: जिसमें AI की इंटीग्रेशन है इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन के साथ.
1: So, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि एक जमाना होता था जब इस तरह के टूल्स के बारे में बात की जाती थी तो उनको टोटल निगेट कर दिया जाता था. लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ आप लोग इसको निगेट नहीं कर रहे बल्कि इसका राइट यूज सिखा रहे हैं.
2: वी एक्चुअली एम्ब्रेस्ड इट इन द वेरी बिगिनिंग, और हमने बिल्कुल नहीं सोचा कि नहीं हमें ये अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, उनको डिस्करेज करना चाहिए. नहीं, हमने उनको इनकरेज किया कि वो इसको यूटिलाइज करें, और हम उनको सिखाते हैं कि आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स भी कैसे दे सकते हैं ताकि आप रेलिवेंट जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं उससे चैट जीपीटी से, तो आप उसे उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं.
3: हाँ, और इसमें एक और चीज है कि यानी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड दैट कि हमने उससे डेटा जनरेट नहीं करना. Or like that is not acceptable. That falls in the category of plagiarism. Data generate नहीं करना, इसके अलावा writing भी generate नहीं करनी. तो ये जैसे डॉक्टर ताहिर ने अभी कहा कि you know developing the ability to give right kind of prompts. ये सारे सवाल research के हवाले से ethical consideration में fall करते हैं. जैसे कि ethical consideration की, तो आप even when you are constructing a research question, so you have to consider ethics, so on and so forth. इसी हवाले से ये भी उसी में है कि आप you cannot generate data, you should not do analysis through those ताकि आपका जो human mind की जो application है वो हो. हाँ, yes, उसको tools को effectively use करने का क्या तरीका है, उस पे हमारा काफी उस पे एम्फेसिस रहता है.
1: Well, right, sir. For the students who are interested in research and future studies, department offers, of course, remarkable resources and guidance. Well, of course, we will explore that right after this short break. Stay tuned with us. This is FM 92.6 UCP Ki Duniya.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक टू FM 92.6 जहां हमारा शो चल रहा है UCP फैकल्टी और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे रिसर्च पे। तो जी सर, आप बताना चाह रहे थे
2: जी,
1: कुछ?
2: मिस नैयाब, मैं आपके सुनने वालों को बताता चलूँ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश रेगुलरली ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल सिम्पोजियम्स एंड देन सेमिनार्स एंड वेबिनार्स। इसमें हम जब इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर आज़ादी देते हैं कि वो इनको ऑर्गेनाइज करें ताकि उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो डिवेलप हो सकें, और हम उनको ये भी चांस देते हैं कि वो जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हमारे यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं या दूसरी यूनिवर्सिटी से जो टीचर्स, रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स आते हैं रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में, उनके साथ उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन हो सके और अपने वो इंटरनेशनल लिंक्स डिवेलप कर सकें, और इससे हम उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने जो स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, ग्रूमिंग है, उसको वो इन्हेंस कर सकें, और हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि ताकि वो मार्केट में जाएं तो सक्सेसफुल ज़िंदगी अपनी गुजार सकें और जितने ज़्यादा चांसेस अवेलेबल हैं मार्केट में उनको अक्वायर कर सकें।
1: बिल्कुल, इससे इनकी क्रिएटिविटी भी काफ़ी बूस्ट हो जाती होगी ना। तो सर, एक और चीज़ थी मेरे माइंड में एज अ स्टूडेंट कि यूनिवर्सिटी लाइफ, आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अबाउट द बुक्स और लेक्चर, इट्स आल्सो अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ, अगर इस पर कोई बात की जाए तो।
3: I definitely agree with it. I mean, it becomes really tough for the students sitting in class. Or given ke hum logon ka attention span jo hai wo din ba din kam hota chala ja raha hai.
1: Bilkul, bilkul.
3: It's really tough to, you know, place students within a class and, you know, ask them to just go with the academic activities. So, you know, our department particularly, you know, they represent two societies within UCP. That is UCP Literary Society and the other one is Rhymester Society. So both these societies are showcasing creativity in their own way. Literary Society is talking about literatures and all the genres of literature in all languages. So jab humne Literary Society ko form kiya tha, we had that vision that it should not be particularly concerning the English language because literature tamam zubanon mein
1: bilkul bilkul wo
3: create kiye jate hain, wo padhe jate hain, appreciate kiye jate hain. So our focus was more on the multilingual aspect of literature, and that is something that we showcase throughout, you know, the university. Aur uske through hum kafi events bhi karwate hain, book launches and, you know, discussions that could help students, those who want to study Punjabi literature, Urdu literature, Persian literature, any literature of that sort that they like. Iske saath saath, particularly for poetry, because I think poetry is a dying form in current world, and it's very sad, but it is like that. So in order to keep you know, this cozy atmosphere for the students who have this yearning for rhymes, we have this Rhymester Society, and Nayaba, you're also associated with that society. So I think it's a brilliant project for the writers, those who want to write in verse. So abhi recently we had a collaboration with the Japanese embassy, published an anthology of haiku, and I think that was a very creative project led by Nayaab and Sarosh. So that was brilliant. Also, you know, we have literary festivals organized, you know, every year we have these literary carnivals where we, you know, invite writers from, you know, different universities and, you know, different forums where, you know, they can come and collaborate with us. So the creative side of students have to be explored in terms of the fact that they are obviously a part of their, you know, literary faculty, but those who, you know, want to get into the publishing industry, that is also very important, because hum sirf ye nahi chahte ki students ka expression literature ko leke behtar ho, hum ye chahte hain ki wo kuch create bhi kare. So we create this liaison with the publishing industry as well, where students are publishing. We have so many students who have already published their books and it's in the market available, and then we also link it with the business of publishing as well, so it can be lucrative as well for our students, so they can, you know, cash their creativity. It's not just about writing books and then not getting anything at the end of the day. So that aspect I think is very significant in our department, that we do showcase a variety of creative activities.
4: मैं बस इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि आपने ये जो कैश करने की बात की, तो कैश करने का एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी तो हो सकता है ना, नॉट एग्जैक्टली यूटिलिटेरियन इन टर्म्स ऑफ मनी. तो वो यूं भी तो हो सकता है कि जो रेलेवेंस है लिटरेचर का, क्या उसकी अहमियत लाइफ के लिए है या नहीं है.
1: Exactly. बिल्कुल.
4: एंड आई बिलीव के इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. हाउ? मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कोविड आया, और सारी दुनिया उसकी लपेट में आ गई। अब कोविड को आपने वैक्सीन आ गई, उससे तो रिकवरी हुई है, लेकिन वो जो लॉसेस हैं, वो जो मैसिव लॉसेस हुई है, ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है और उसके साथ जो ट्रॉमा रिलेटेड है, उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास क्या कोई रेमेडी है? वो रेमेडी आपको कहीं म्यूजिक में आएगी, कहीं डांस में आएगी, ये जो परफॉर्मेंस आर्ट है उसके अंदर आएगी, और पोएट्री में आएगी। यानी अदरवाइज तो लाइफ एक बिल्कुल एक टीडियस तो इज एनी वे है, लेकिन उसके अंदर एक जो बोरियत और बेजारी का जो आंसर है, एलियनेशन का जो आंसर है, उसको काउंटर करने के लिए यू नीड गुड लिटरेचर। आपके रिचुअल्स हैं, आप शादी ब्याह हैं, आपकी जो फ्यूनरल्स हैं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, दो दिन पहले मैं पढ़ रहा था, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, अल्लामा इकबाल, उन्होंने जो शेक्सपियर को ट्रिब्यूट पेश किया, और नज्म का उन्मान ही शेक्सपियर है, तो आप जरा ये देखें कि वो कैसे ट्रिब्यूट, एक बड़ा आदमी एक बड़े आदमी को कैसे ट्रिब्यूट पेश करता है। थोड़ी सी मुश्किल है, माजरत है, लेकिन तुझको जब दीदाए दीदार तलब ने ढूंढा, ये शेक्सपियर के बारे में कह रहे हैं, ताबे खुर्शीद में खुर्शीद को पिन्हा देखा, When the eye wished to see you and looked, it saw the sun hidden in its own brilliance. Chashme alam se tu hasti rahi mastoor teri, aur alam ko teri aankh ne uriyan dekha. Chashme alam se tu hasti rahi mastoor teri, aur alam ko teri aankh ne uriyan dekha. English mein iska yun hoga ki you were hidden from the eyes of the world, but with your own eyes you saw the world exposed and bare. और आखिर में कि हिफ्ज इसरार का फितरत को है सौदा ऐसा, राजदां फिर न करेगी कोई पैदा ऐसा। अब बेसिकली तो लाइक ओके, एक बड़ा आदमी है, मर गया, आपने उसे दफन कर दिया, अब उसको, लेकिन पीपल विल फॉरगेट दैट बट विल नॉट फॉरगेट दिस। तो इसके अंदर जो एक इटर्निटी का, और वो इटर्निटी है जो हमें नेचर के साथ फिर लिंक करती है।
1: Behtareen. So that's a great news for our aspiring students. Well, now here I would like to talk to my listeners ki agar aap interested hain to please do not wait. Apply kare aaj hi. University of Central Punjab ki website par unka contact number hai. Aap personally visit bhi kar sakte hain. I'm very inspired by the department. Aaj ke show ke liye bas itna hi, but conversation, of course, it doesn't end here. If you have any questions, feel free to reach out to university. Thank you to our guests for sharing the valuable insights, and thank you, dear listeners, for tuning in. Until next time, this is your host, Nayab Afzal. Stay inspired, keep learning. FM 92.6 UCP Ki Duniya.

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया। Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: www.ucp.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.uk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسی پی
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: यूसीपी की दुनिया आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। लिसन, लर्न, डिस्कवर विद रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: www.ucp.edu.pk FM 92.6 Live Station of the Nation.

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

ये है पाकिस्तान की आवाज यूसीपी रेडियो FM 92.6। लेट्स गेट स्ट्रेस फ्री, ट्यून इन टू FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
0: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.1।

0: हम आपको अपने बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स से मिलवाएंगे और वो अपने एक्सपीरियंस के साथ कोशिश करेंगे कि आपके जहन में जो भी सवालात हैं उनका जवाब दे सके। तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी अपने स्टीम्ड प्रोफेसर्स और टीचर्स के साथ। वी हैव डॉक्टर ताहिर सलीम जो कि एक प्रोफेसर है इंग्लिश डिपार्टमेंट के, और इसके अलावा ही इज ऑल्सो सर्विंग एज एसोसिएट हेड डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर हबीब काजी हु इज एसोसिएट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। हमारे साथ हैं मिस अरीबा, शी इज अ लेक्चरर एट इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड टीचिंग लिटरेचर मेनली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एवरीवन एट आवर शो।
1: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस।
0: राइट सर, थैंक यू सर। अब मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो एज अ स्टूडेंट मैं जानना चाहूंगी कि आप मुझे डिपार्टमेंट का एक पूरा ओवरव्यू बता सकें, तो लाइक डिपार्टमेंट में कौन से की प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं और लाइक क्या क्या हमारा करिकुलम में ऐड है, ताकि मैं एज अ स्टूडेंट इसे ऑप्ट करने की कोशिश करूँ।
1: जी मिस नयाब, मैं आपके सुनने वालों को बताता चलूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में हम बी एस इंग्लिश का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। ये लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों के सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं बी एस इंग्लिश में। उसके अलावा हम एम एस अप्लाई लैंग्वेज ऑफर करते हैं, एम एस इंग्लिश लिटरेचर ऑफर करते हैं, और पीएचडी इन इंग्लिश लैंग्वेजेस हम ऑफर करते हैं। तो हमारे बड़े ही ये डाइवर्स प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स के जो क्रिटिकल इंक्वायरी है ये स्किल्स डेवलप किए जाएं, उनके कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स डेवलप किए जा सकें, और उनको प्रिपेयर करें हम करियर्स इन वेरियस फील्ड्स लाइक पब्लिशिंग, पासिंग सीएसएस एग्जाम्स, एजुकेशन, डिप्लोमेसी एंड मीडिया।
0: Inspiring, inspiring sir. ये diversity जो programs आपने मुझे बताई, of course it's going to open doors for numerous opportunities. But इससे पहले कि हम career opportunities पर बात करें या फिर हम ये बात करें कि हम Department of English को किस तरह से opt कर सकते हैं, so that's truly inspiring. I mean जो आपने diversity बताई programs की, of course it's going to open a lot of doors for the different opportunities. और बहुत like मुझे तो interesting लग रहा है, बहुत intriguing लग रहा है, of course मुझे तो मतलब मैं personally इसको जरूर opt करना चाहूंगी। अच्छा सर, एक और सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा था एंड ऑफकोर्स हमारे लिसनर्स के माइंड में भी आ रहा होगा कि इसमें हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, लाइक करियर के हवाले से ये किस तरह से मुझे इंग्लिश डिपार्टमेंट या फिर ऑप्ट करना लैंग्वेज लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स किस तरह से हेल्प कर सकता है।
1: जी मिस नयाब, मैं आपके सुनने वालों को बताता चलूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल। हम काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हम रेगुलरली एमओयू साइन करते हैं, और हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं ताकि वो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें, और उनके मुताबिक ही हम अपने करिकुलम को भी डेवलप करते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड कमेटी है, इस कमेटी में दो एक्सटर्नल मेम्बर्स होते हैं जो इंडस्ट्री से होते हैं। हम उनको रेगुलरली इन्वाइट करते हैं और अपने कोर्स आउटलाइंस को उनसे रिव्यू करवाते हैं, और अपने जो कोर्स आउटलाइंस हैं उनको लिंक करते हैं कि वो इंडस्ट्री जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या उनको फुलफिल करती हैं कि नहीं। इसका मकसद ये है कि ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को वो करिकुलम पढ़ाएं जिसको वो पढ़ें, सीखें और जाके मार्केट में अपनी जॉब तलाश कर सकें, और वी मेक देम रेडी फॉर द जॉब्स। एक्चुअली दिस इज़ आवर पर्पज़ एंड अकॉर्डिंगली वी डिज़ाइन आवर कोर्स आउटलाइंस।
0: सर बेहतरीन, मतलब ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया कि मॉडर्न ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको पता है कि लाइक किस तरह से उनके फ्यूचर हो सकते हैं। सर जो आपने बेस्ट बात की जो मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगी वो था सीएसएस, क्योंकि आजकल सब लोगों का ज़्यादातर फोकस होता है सीएसएस करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ आना। तो मिस अरीबा, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि
2: Actually, definitely, I would like to poll in, particularly for the question ke what the market requires at this point, because the market has changed drastically. Now, if we talk about language and literature in particular, so hum is cheez ko samajhne mein kafi der kar chuke hain ki market requirement jo hai wo change ho chuki hai. In terms of literature, what I see and I've seen my students working in various fields as well, content writing is a very promising, you know, field where students are working. Now, this is something that they can earn while they are students and after completion of their degree as well. And then one field that I, you know, personally feel ke yahan pe students ka zyada rujhan hona chahiye, that is drama and theater. They can write scripts for the dramas, you know, they can indulge themselves in theater, they can work with the dramatist, and we have so many students who are writing their books as well. So if you're into writing and you want to publish your books, then definitely ye ek aisa route hai that is going to formally, you know, make you a good writer, not in terms of the fact ke you would just publish your book, but the fact ke you can produce a good body of criticism around it as well.

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: Welcome back, listeners. You're tuned into FM 92.6 UCP Ki Duniya, jahan hamara show chal raha hai UCP Faculty Hour. And we're discussing about the English department or iski exciting offerings. To break pe jaane se pehle hamari baat ho rahi thi Miss Ariba ke saath, jo hame bata rahi thi ke future prospects kya ho sakte hain, career ke hawale se hame English department kis tarah se help karta hai. To Miss Ariba, please aap continue kar sakte hain.
4: So I was referring to the industry and the diversity that we see in the industry today and how it's, you know, changing day by day. So, going back to your question, what you were asking earlier, Nayab, about CSS and many other competitive exams that, you know, students like to compete in terms of, you know, English literature, linguistics and language, I think it could be very beneficial for the students because not just that, it improves their, you know, expression, because obviously language is, you know, an important tool for the competitive exams. But at the same time, the way they critically view the questions is also very important. And I think this comes with their understanding of literature and the world around them.
3: Literature definitely
4: brings a world view in a different perspective. So not just that they understand, you know, the mini narratives, but a nuanced understanding of the current politics of the world is also, you know, there with literature. So agar aap ek perspective se dekhe, so literature is giving them an interdisciplinary understanding of, you know, what's happening around. And that is very important for CSS, because not just writing, aapne world view ko bhi dekhna hai. आपने करंट टाइम्स को देखना है, आपने उस टाइम की मूवमेंट्स को देखना है. सो ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इफ यू स्टडी देम इन डिटेल. एंड आई थिंक यू नो आवर डिपार्टमेंट करिकुलम इज प्रोवाइडिंग यू विद दैट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दैट कैन हेल्प यू क्लियर सीएसएस.
3: यस एग्जैक्टली. और जैसे डॉक्टर ताहिर ने भी हमें कुछ वक्त पहले बताया कि इंग्लिश डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ, तो वो तो लग रहा है बहुत ज्यादा होगा, इंटरेस्टिंग होगा.
4: यस एंड द वैरायटी ऑफ कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग इज ऑल दे आर आल्सो वेरी इंटरडिसिप्लिनरी. Because abhi recently we, you know, last year, I think if I'm not wrong, we offered a course for digital storytelling that was in collaboration with CS department. We are also planning to, you know, have some courses that are linked with the Pol Science department and many others, so that, you know, a variety of courses, you know, could be displayed.
5: Let me add, Ms. Naya, here we are regularly updating our courses for BS programs, MS and then PhD. Recently, we got approval of 3 of our courses as well. Ms. Ariba can mention the name and title of the course that we have introduced in BS English of related to literature.
4: Exactly, yes. What that is Blue, that one? Yeah, that's Blue Humanities. It's an interdisciplinary course that deals with, you know, the water crisis.
3: I really
4: the water
3: wanted to know interdisciplinary courses. Thank you, Ms. Ariba. Ye bahut interesting.
4: Exactly. And then we have eco-linguistics as well. Yes.
5: And then we have also included clinical linguistics.
4: Yes.
5: So these courses we have included to provide interdisciplinary research to our students.
3: And seems to be very modern.
5: Yes,
3: trending
5: exactly.
3: और टाइम के लिहाज से बहुत अपडेट कोर्स लग रहे हैं. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत इंटरेस्टिंग है. सर एक और सवाल जो मेरे जहन में भी आ रहा था कि हाउ डू स्टूडेंट्स इंगेज दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिगार्ड टू लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट और रिसर्च. तो रिसर्च से मैं जानना चाहूंगी कि क्या अपॉर्चुनिटीज हमारी इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है एंड हाउ डू वी केटर रिसर्च हियर.
6: इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम रिसर्च स्किल्स को स्टूडेंट्स में इंस्टिल करने की कोशिश करते हैं. अभी जैसे डॉक्टर ताहिर ने बात की, मिस अरीबा ने बात की कि वी ऑफर अ ह्यूज वैरायटी, अ वाइड एरे ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, और हम वो स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं. अब जाहिर है जब आप स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिव स्किल्स पे जाते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ एक सिस्टम है तो उसमें एग्जाम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छे भी हों जब तक उनकी लैंग्वेज स्किल्स वेल डेवलप नहीं हैं,
3: बिल्कुल,
6: तो वो उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आती. तो यहाँ पे इस हवाले से डिपार्टमेंट के अंदर हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से, लैंग्वेज स्किल्स के हवाले से तो वी मेक एफर्ट्स फॉर द एंटायर यूनिवर्सिटी. आई बींग द डायरेक्टर मेक श्योर के आर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स इन देयर क्लासेस, और उसके लिए हमने करिकुलम के अंदर चेंजेस लाई, उसके अंदर हमने टीचिंग स्टाइल्स के अंदर लाई, यू नो नाउ. एंड दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक फीचर ऑफ यूसीपी दैट ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन क्लासरूम ऑन डेली बेसिस इन ऑल. यानी अब हमने टीचिंग को एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट दे दी है और स्टूडेंट सेंटर्ड कर दिया है इसे. अब आते हैं रिसर्च वाले जो बात है कि सबसे पहले तो हमारे अपने क्रेडेंशियल्स हैं, यानी हमारे यहाँ जो फैकल्टी है इट्स अ वेरी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी एट द फर्स्ट प्लेस, एंड सेकेंडली दे हैव एक्सट्रीमली क्रेडिबल रिसर्च क्रेडेंशियल्स। हमारी मेजॉरिटी जो प्रोफेसर हजरात हैं, हमारे जो लेक्चरर्स हजरात हैं, उनकी इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिकेशंस हैं। और इसी तरह अब ये तो एक एस्पेक्ट है, ये तो एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट है, लेकिन वो जो स्किल्स डेवलप की हैं ओवर द ईयर वो हम स्टूडेंट्स में बहुत कॉन्शियसली इंस्टिल करते हैं, और नतीजतन हमारे बहुत सारे एमएस के और पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं इवन बिफोर हैविंग कंप्लीटेड देयर डिग्रीज दे हैव पब्लिश्ड इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स।
3: Amazing.
5: Okay, let me add here, Dr. Kazi, thank you for adding all this. Our students, this is my claim, ये मेरा दावा है कि हमारे students जो अभी MS कर भी नहीं रहे होते, जैसे Dr. Kazi ने बताया, वो impact factor journals में publish कर रहे हैं। BS के students जिनका भी BS complete नहीं हुआ वो impact factor journals में publish कर रहे हैं। And it was previously a myth that people from literature and linguistics, they cannot publish in impact factor journals. Now we have busted that myth and now we are continuously publishing in impact factor journals, and then our young lecturers, they are publishing in impact factor journals. We are expecting from our PhDs that they should publish in impact factor journals. They all are publishing, but young lecturers, young students, they all are publishing in impact factor journals. So it is my claim that my department is publishing the best research in Lahore and even in Pakistan in top quality journals.
6: True that.
3: बेहतरीन सर, मेरे जहन में अभी भी कुछ सवाल हैं रिसर्च से रिलेटेड, विल एक्सप्लोर देम ऑफ कोर्स राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस, इस इज FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग FM 92.6 जहां हमारा इस वक्त शो चल रहा है UCP फैकल्टी आर। यहाँ ब्रेक पे जाने से पहले हमें डॉक्टर ताहिर बता रहे थे रिसर्च के बारे में। सर, मेरा यहाँ पर एक छोटा सा सवाल था जो शायद एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट सभी के माइंड में आ रहा हो कि क्या BS का बच्चा भी रिसर्च में इन्वॉल्व होता है या वो भी कोई थीसिस लिखता है? क्योंकि मेरे ख्याल से ये बड़ा मुश्किल होता होगा ना, फर्स्ट टाइम रिसर्च के साथ फेमिलियर होना, इतनी टेक्निकलिटीज में आना।
2: जी मिस नेयाब, मैं आपके सुनने वालों को, स्पेशली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि HEC का जो करिकुलम है उसमें मेंशन किया हुआ है कि टीचर्स, हम जो टीचर्स हैं, हमने अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोज करना है रिसर्च राइटिंग के हवाले से फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर। सो वी ग्रेजुअली प्रिपेयर देम बाय गिविंग देम सम असाइनमेंट्स, 500 वर्ड्स इन द बिगिनिंग इन द फर्स्ट ईयर, 1000 वर्ड्स इन द सेकंड ईयर, रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज, एंड देन 3000 वर्ड्स देन इन द थर्ड ईयर, and in the fourth year we move to 5000 to 8000 words in the seventh and
1: eighth, a mini thesis
2: exactly,
1: time, yeah,
2: in the seventh and eighth semester we offer them a course as well that is related to research, and then our teachers, they work very hard for our students grooming, and then they prepare them to write research papers. As I mentioned previously, my students, they are publishing, even 7th and 8th semester students, they are publishing in impact factor journals, and we are grooming them and we are making them ready for the market.
1: Isi baat se mere mind mein ye question aaya tha ki ye to bahut mushkil task hota hoga, of course teachers ke liye bhi bahut mehnat hogi, to काफी interesting lag raha hai ki hamare bacche bhi kar rahe hain, BS ke bacche bhi.
3: Main Dr. Tahir ki add karta chalo unki baat mein ki jaise currently in the current semester I was teaching 7th semester student रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कोर्स था, तो लाइक 45 स्टूडेंट्स थे उसमें, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई स्टार्टेड गिविंग देम ट्रेनिंग इन रिसर्च, और उनका जो मिनिमल टास्क रखा ये था कि देल बी राइटिंग अ रिसर्च आर्टिकल, और उसमें जो एटलीस्ट फर्स्ट 4 सेक्शंस, जिसमें लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन लीडिंग टू लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च मेथोडोलॉजी, और ऑप्शनल हमने रखा था कि उसमें एनालिसिस पे भी, एंड इट्स नॉट ओनली इन वन सेक्शन, लाइक वी हैव सेवरल सेक्शंस एट द मोमेंट। तीनों सेक्शंस में स्टूडेंट्स ने, ऑल ऑफ देम, एटलीस्ट फर्स्ट 3 चैप्टर्स उन्होंने सबमिट किए हैं अपने रिसर्च आर्टिकल के, इंट्रो, लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के। तो दैट्स हाउ वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स इन रिसर्च।
4: I would like to add here, Nayab, that research does not come just from teaching. Jaise Sir Tahir ne bataya and Dr. Kazi ne, there needs to be an environment for research, and I think UCB is providing that environment, particularly in our department. If I would enlighten the audience here, that we have research groups that are, I think, 4 research groups, yeah, and that are working in various fields. Some of them are working in linguistics purely, some in literature, and some are working on interdisciplinary and multidisciplinary researches. And these groups not just enable the students to conduct research in collaboration with the teachers, but they're also organizing research discussions and talks that are happening almost every week, if I'm not wrong, Dr. Tahir. And the purpose of this is that they can interact with the researchers abroad, directly through virtual forums, and they can ask questions. And some of the researchers that we have brought to UCP in our recent events that we have conducted are researches that were published in 2023 or 2024, and these are very recent researches. So we really want that a liaison is to be created between the international researchers and the researchers at UCP. So overall, what I'm trying to say over here is that we are creating that atmosphere of research, which is very important in modern times.
1: Well, that's fascinating. I mean, from academia to media, publishing to corporate sectors, or opportunities to bahut endless ho gayi hain yahan pe. Sir, ek aur sawal tha, kuch mere jaise students hote hain jinki English thodi si weak hoti hai, tools ke bare mein aap kuch guide karna chahenge? Jaise ChatGPT aajkal bahut in hai, to kya mere jaise kamzor angrezi wale log ChatGPT use karke research kar sakte hain?
2: Yes, but again, उसके लिए मैं आपके स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी को, उतना ही अच्छा वो रिस्पांस आएगा. तो यस, हमारे तमाम कोर्सेज में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं हमारे, हमने कोर्स आउटलाइंस में इंक्लूड किया हुआ है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को जितने AI टूल्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाना है. हम अपने स्टूडेंट्स को बिगनिंग में ही एक्सपोज कर देते हैं AI टूल्स से, एंड वो फिर उसको सीखना शुरू कर देते हैं, और टीचर्स उनको गाइड करते हैं कि आप इन टूल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर देयर राइटिंग, देयर स्पीकिंग एंड देयर रीडिंग एंड वोकैबुलरी डेवलपमेंट स्किल्स.
3: और इसमें मैं एक ऐड करूं कि हम एक कोर्स भी MS लेवल पे एक कोर्स भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं.
2: Exactly.
3: जिसमें AI की इंटीग्रेशन है इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन के साथ.
1: क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि एक जमाना होता था जब इस तरह के टूल्स के बारे में बात की जाती थी तो उनको टोटल निगेट कर दिया जाता था. लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ आप लोग इसको निगेट नहीं कर रहे बल्कि इसका राइट यूज सिखा रहे हैं.
2: वी एक्चुअली एम्ब्रेस्ड इट इन द वेरी बिगिनिंग, और हमने बिल्कुल नहीं सोचा कि नहीं हमें ये अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, उनको डिस्करेज करना चाहिए. नहीं, हमने उनको इनकरेज किया कि वो इसको यूटिलाइज करें, और हम उनको सिखाते हैं कि आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स भी कैसे दे सकते हैं ताकि आप रेलिवेंट जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं उससे चैट जीपीटी से, तो आप उसे उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं.
3: हाँ, और इसमें एक और चीज है कि यानी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड दैट कि हमने उससे डेटा जनरेट नहीं करना. Or like that is not acceptable. That falls in the category of plagiarism. Data generate नहीं करना, इसके अलावा writing भी generate नहीं करनी. तो ये जैसे डॉक्टर ताहिर ने अभी कहा कि you know developing the ability to give right kind of prompts. ये सारे सवाल research के हवाले से ethical consideration में fall करते हैं. जैसे कि ethical consideration की, तो आप even when you are constructing a research question, so you have to consider ethics, so on and so forth. Isi hawale se ye bhi usi mein hai ki aap, you cannot generate data, you should not do analysis through those taaki aapka jo human mind ki jo application hai wo ho. Ha, yes, usko tools ko effectively use karne ka kya tarika hai.
1: Well, right, sir. For the students who are interested in research and future studies, department offers, of course, remarkable resources and guidance. Well, of course, we will explore that right after this short break. Stay tuned with us. This is FM 92.6 UCP Ki Duniya.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक टू एफ एम 92.6 जहां हमारा शो चल रहा है यूसीपी फैकल्टी और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे रिसर्च पे। तो जी सर, आप बताना चाह रहे थे
2: जी
1: कुछ?
2: मिस नयाब, मैं आपके सुनने वालों को बताता चलूँ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश रेगुलरली ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल सिम्पोजियम्स एंड देन सेमिनार्स एंड वेबिनार्स। इसमें हम जब इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर आज़ादी देते हैं कि वो इनको ऑर्गेनाइज करें ताकि उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सकें, और हम उनको ये भी चांस देते हैं कि वो जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हमारे यूनिवर्सिटीज में आते हैं या दूसरी यूनिवर्सिटी से जो टीचर्स, रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स आते हैं रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में, उनके साथ उनका ज्यादा से ज्यादा इंट्रैक्शन हो सके और अपने वो इंटरनेशनल लिंक्स डेवलप कर सकें, और इससे हम उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने जो स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, ग्रूमिंग है, उसको वो इन्हेंस कर सकें, और हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि ताकि वो मार्केट में जाएं तो सक्सेसफुल जिंदगी अपनी गुजार सकें और जितने ज्यादा चांसेस अवेलेबल मार्केट में उनको अक्वायर कर सके।
1: बिल्कुल, इससे इनकी क्रिएटिविटी भी काफी बूस्ट हो जाती होगी ना। तो सर, एक और चीज थी मेरे माइंड में एज अ स्टूडेंट कि यूनिवर्सिटी लाइफ, आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अबाउट द बुक्स और लेक्चर, इट्स आल्सो अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ, अगर इस पर कोई बात की जाए तो।
3: I definitely agree with it. I mean, it becomes really tough for the students sitting in class. Or given ke hum logon ka attention span jo hai, wo din ba din kam hota chala ja raha hai.
1: Bilkul, bilkul.
3: It's really tough to, you know, place students within a class and, you know, ask them to just go with the academic activities. So, you know, our department particularly, you know, they represent two societies within UCP. That is UCP Literary Society and the other one is Rhymester Society. So both these societies are showcasing creativity in their own way. Literary Society is talking about literatures and all the genres of literature in all languages. So jab humne Literary Society ko form kiya tha, we had that vision that it should not be particularly concerning the English language because literature tamam zubano mein
1: bilkul bilkul
3: wo create kiye jate hain, wo padhe jate hain, appreciate kiye jate hain. So our focus was more on the multilingual aspect of literature, and that is something that we showcase throughout, you know, the university. Aur uske through hum kafi events bhi karwate hain, book launches and, you know, discussions that could help students, those who want to study Punjabi literature, Urdu literature, Persian literature, any literature of that sort that they like. Iske saath saath, particularly for poetry, because I think poetry is a dying form in current world, and it's very sad, but it is like that. So in order to keep you know, this cozy atmosphere for the students who have this yearning for rhymes, we have this Rhymester Society, and Nayaba, you're also associated with that society. So I think it's a brilliant project for the writers, those who want to write in verse. So abhi recently we had a collaboration with the Japanese embassy.
1: Yeah,
3: where we, you know, published an anthology of haiku, and I think that was a very creative project led by Nayab and Sarosh. So that was brilliant. Also, you know, we have literary festivals organized, you know, every year we have these literary carnivals where we, you know, invite writers from, you know, different universities and, you know, different forums where, you know, they can come and collaborate with us. So the creative side of students have to be explored in terms of the fact ke ek to they are, you know, obviously a part of their, you know, literary faculty, but those who, you know, want to get into the publishing industry, that is also very important, because hum sirf ye nahi chahte ki students ka expression literature ko leke behtar ho, hum ye chahte hain ki wo kuch create bhi kare. So we create this liaison with the publishing industry as well, where students are publishing. We have so many students who have already published their books and it's in the market available, and then we also link it with the business of publishing as well, so it can be lucrative as well for our students, so they can, you know, cash their creativity. It's not just about writing books and then not getting anything at the end of the day. So that aspect I think is very significant in our department, that we do showcase a variety of creative activities.
1: Wonderful.
3: Every now and then.
4: Main bas isme ek cheez add karunga ki aapne ye jo cash karne ki baat ki, to cash karne ka एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी तो हो सकता है ना, नॉट एग्जैक्टली यूटिलिटेरियन इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो यूं भी तो हो सकता है कि जो रेलेवेंस है लिटरेचर का, क्या उसकी अहमियत लाइफ के लिए है या नहीं है?
1: Exactly.
5: बिल्कुल.
4: एंड आई बिलीव कि इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. हाउ? मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कोविड आया, और सारी दुनिया उसकी लपेट में आ गई। अब कोविड को आपने वैक्सीन आ गई, उससे तो रिकवरी हुई है, लेकिन वो जो लॉसेस हैं, वो जो मैसिव लॉसेस हुई है, ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है और उसके साथ जो ट्रॉमा रिलेटेड है, उसके लिए आप क्या करेंगे? Exactly. आपके पास क्या कोई रेमेडी है? वो रेमेडी आपको कहीं म्यूजिक में आएगी, कहीं डांस में आएगी, ये जो परफॉर्मेंस आर्ट है उसके अंदर आएगी, और पोइट्री में आएगी। यानी अदरवाइज तो लाइफ एक बिल्कुल एक टीडियस तो इज एनी वे है, लेकिन उसके अंदर एक जो बोरियत और बेजारी का जो आंसर है, एलियनेशन का जो आंसर है, उसको काउंटर करने के लिए यू नीड गुड लिटरेचर। आपके रिचुअल्स हैं, आप शादी ब्याह हैं, आपकी जो फ्यूनरल्स हैं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, दो दिन पहले मैं पढ़ रहा था, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, अल्लामा इकबाल, उन्होंने जो शेक्सपियर को ट्रिब्यूट पेश किया, और नज्म का उन्मान ही शेक्सपियर है, तो आप जरा ये देखें कि वो कैसे ट्रिब्यूट, एक बड़ा आदमी एक बड़े आदमी को कैसे ट्रिब्यूट पेश करता है। थोड़ी सी मुश्किल है, माजरत है, लेकिन तुझको जब दीदाए दीदार तलब ने ढूंढा, ये शेक्सपियर के बारे में कह रहे हैं, ताबे खुर्शीद में खुर्शीद को पिन्हा देखा, When the eye wished to see you and looked, it saw the sun hidden in its own brilliance. Chashme alam se tu hasti rahi mastoor teri, aur alam ko teri aankh ne uriyan dekha. Chashme alam se tu hasti rahi mastoor teri, aur alam ko teri aankh ne uriyan dekha. English mein iska yun hoga ki you were hidden from the eyes of the world, but with your own eyes you saw the world exposed and bare. और आखिर में कि हिफ्ज़ इसरार का फितरत को है सौदा ऐसा, राजदां फिर न करेगी कोई पैदा ऐसा। अब बेसिकली तो लाइक ओके, एक बड़ा आदमी है, मर गया, आपने उसे दफन कर दिया, अब उसको, लेकिन पीपल विल फॉरगेट दैट बट विल नॉट फॉरगेट दिस। तो इसके अंदर जो एक इटर्निटी का, और वो इटर्निटी है जो हमें नेचर के साथ फिर लिंक करती है।
1: Behtareen. So that's a great news for our aspiring students. Well, now here I would like to talk to my listeners ki agar aap interested hain to please do not wait. Apply karein aaj hi. University of Central Punjab ki website par unka contact number hai. Aap personally visit bhi kar sakte hain. I'm very inspired by the department. Aaj ke show ke liye bas itna hi, but conversation, of course, it doesn't end here. If you have any questions, feel free to reach out to university. Thank you to our guests for sharing the valuable insights, and thank you, dear listeners, for tuning in. Until next time, this is your host, Nayab Afzal. Stay inspired, keep learning. FM 92.6 UCP Ki Duniya.

Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: लोगे।
1: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है, डरे नहीं और चीख के कहें।
2: खबरदार, छूना मना है।
3: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
3: In sadaye Lahore hai. In sadaye UCP hai. Lutfan goosh badahid. FM 92.6 jahane UCP.

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 0423111877 पर राब्ता कीजिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: नहीं खेलने?
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.
5: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।